0: Baiklah warga, sampai di sini akhirnya Anda bersama di weekend Anda hari ini. G, tetap terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok yang pengen istirahat siang dan ditemani lagu-lagu kenangan nostalgia tempo masa indah dulu. Tetap di sini aja ya. Oke, mujib mafkar kalau ada salah kata ya dari Hana Sari. Anda langsung saja undur diri pamit. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाहा बुलबुल प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, ओ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सुबह
4: सुबह
3: सुबह
4: मंडलिका.